0: दिवेही एफएम, दिवेही नेट।
1: नोदी है एकम मेगाहर्ट्ज़ दिवेही एफएम।
2: स्पोर्ट्स बीट, स्पोर्ट्स बीट।

0: अस्सलाम वालेकुम नदे के मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम के हुन तेरी नाम उफावेरी वगुत कोलकंगे दे मु स्पोर्ट्स बीट मी प्रोग्राम आ एकीगा एहुन तेरी नामी पतल कोल दी समा एकी दायरा तो के कुलीवर कुलुन तेरी नायकुगा दिवे एफएम कुरिय केंदा मी स्पोर्ट्स बीट मी प्रोग्राम के फरातु एहुन तेरी नाम मरहबा मी अदगे मी शो वेस कुरिय तानी कुलुन तेरी कायकुगा मी शो गा तफात दायरा तकुन कुलुन तेरी के वाहक तवानी के निस्तीफा मी सिलसिदा के शो तमी के निस्तेनी को मे होमत वे के मेंदुरु ते जहायरो
1: Sports Beat. Sports Beat.
0: No de ek megahertz de FM migari ga kuriyami dani Sports Beat. Me hafta ke show ka mehmani ke gotko paavirwani table tennis kulun teriya Mishka Muhammad Ibrahim. Engamu show kuriya tani Mishka ge tafat wahan ka takai kuga. Namese me furata mama show feshum ge gotu migenis teni gadir ke feshum kam kawa Amil Raagu ke lawa.
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆ ಲವೇ

0: सुनती रही FM 91.1 MHz।
1: मामा हालु की हिने?
2: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुल मेंगे हालु की हिने ता?
3: आरे में मिस्रांगल मामा कौन का में तती कोल्लनी? गेने मामा आहरे में आता
1: मामा ती हावोर कम उले न कमने आहरे में ती कम कोल्ला फानो
2: दारिफुल में हाँ दरंगडे ती गुता मामा गातंग्यास मामा हालु बलाला मामा के कंतत्ता कोल्ले देती मामा वारंग उफावे
4: हेमा भी जहिफावा मी है गिफारातों एहम मी है कबाली फितुरदाने मुद्दा तकी कोबा
5: बिहने गुमगे हतर दुआ स्कोरिंग बिहने गुमा फहु हतर दुआ हा हमें बाली जे हिफा वामी हा के फरातों अहम में होना बाली फतर मुगे फुर्सत होवे
6: हिम बिहगे अलामत फेनि जनमा लसन कुरबा सिही फरवा हो दवा
7: ती एहुन तरिंगे एम मकबूल फन्नानुंगे लवत हेंगिनी की हावरका ए फन्नानुंगे मौलुमा तेंगे निकी आवरका